लक्ष्मी मेर प्रयात रखना अंग संसायो ना गुर सिखी जीवन दे रोग दा बक्षनी कारज रासोन बई बेनती कर दे। सरदार बलदेव सिंह जी श्रीनगर का।

उड़के स्वा मिलेच के करकुड़ा पसार डंका बजे फते कारा कलंगातार चतर चक्रवर्ती चतार चक्र भुगते स्वयं भव सुमं सर्वदा संजुगते दुकाल प्रणासे दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगांग विभूते देख तेगो फतेह नसरत पे दुर्गया तज अज नानक गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरख सहाय दरबार में तिर दरबारा सच खंड वसन निरंकारा लक्ष्मी खड़ी तुमर दरबारा सर्व देवते कर नमस्कार दोहरा नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूरन कर आता जगमग ज्योत बिराज रही श्री अब

जय गुरु गुरु निवास अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सतखंड दरबार दियां हाजरियां भरदे होए कीर्तन दे सत्कार दे संतालो बिंत मैं हाजर हो जिस खजाने विच मैं हाजर किते सो सो खजाने भरपूर करना नाम दान गुर सिखी वाला जीवन वसना दे अरोगता बुखसनिया सम सा सपूर्ण करनी यात्रा सफली करनी सिखों

अनुभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूवृत भान दस चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक शोक बेदार कल काल करम विहीन सब करम धर्म प्रवीण।

अभे खरी अधो खरी अद्व खरी अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपाद हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि।

अभिव हरि अजेव हरि अजेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि। जलस्तु हि थलस्तु हि नदिस्तु हि नतस्तु हि वृक्षस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि। भजस्तु अंग भजस्तु अंग रटस्तु अंग ठटस्तु अंग जिमी तुहि जमा तुहि मकी तुहि मक्का तुहि। अभू तुहि अभ तुहि अछू तुहि अछ तुहि जतस्तु हि व्रतस्तु हि।

त्व प्रसाद कपित खुकमल हरि गज गद हा विभूत दारी गिद्वा मसान बास कर विकरत है खुकमट बास लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन साधई मरत है बिंद के सथैया ताहे हीज की बडैया देत बंदरा सदीव पाए नंग ही फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कह सके तरत है भूत बन चारि छित छौना सब दूधाधारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है तृण के फचैया धन लोभ के तजैया देत गौवन के जैया वृक भैया मानियत है नभ गए उडैया ताहे पंछ की बडैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है जेते बड ज्ञानी तेनो जानी पै बखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कहे नभ के उडैया सोच रैया के बखानी है फल के फचैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदिस फिरैया ते तो भूत के पछानी है जल के तरे को गंगे ऋषि कहत जग आके भचैया सोचा कोर सम्मानिये सूरज सिवैया ताहे कौल की बटाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिये नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जेह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धेन चारी लिखी केस नाम के महंत लहियत है माधव भवर ओ अटेर को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी सार सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है जोगी जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठांड न बहत है मानव फनिंद देव दानव न पावे वेद वेद योग देव नेत नेत कह कहत है नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव गदयोई करत है चंद्रमात शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को फरत है शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेद जारी सन्नत कुमार सी तपस्या न अनत है ज्ञान के विहीन काल हांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है एक शिव भय एक गए एक फेर भय राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है ब्रह्मा और विष्ण के ते वेद और पुराण के ते सिमृत समूहन के होए होए बिताए है मोन जी मदार किते असुने कुमार किते अंसा अवतार किते काल बस भय है पीरे ओ पिकांबर किते गाने न परत एत भूम ही ते होए के फिर भूम ही मिलाए है जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई कोस लो चलत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को तलत है मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूमांत भूम में मिलत है सिज दे करे अनेक तोप जी कपट फेस बोस दी अनेक दान वावत है शीस को कह भयो मल्ल जो पे काढ़त अनेक दंड सो तो न डंडोत अष्टांग अथ तीस को कहा भयो रुकी जो बेडार्यो रहो ऊर्ध मुख मन तेना मुंडने हो रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीस को शीस पट कत जग कान में खजूरा धस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सो आग को चरैया फल फूल को भचैया सदा बान को ब्रह्मया और दूसरो न भूक सो कहा भयो भेड़ जो खसत शीस बृछन सो माटी को भचैया बोल पूछ लीजे जो कुसो कामन अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कस बेटे पर लोक सो नाचे हुई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करो करत है एक पाए ठाट सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चीर देश देश बिचरत है ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे के तरत है जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया बरागी बने कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ बन हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई
कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पै लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोग न फरमावई कामना अधीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकार पर शीत काल कुंचर ओगत हा अनेक ता पुकार ही कहा भय जो पकल वत्र लियो कांस बीच चीर चीर चोरटा उठारन सो मारही। कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ढग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूढ़ ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कस ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो बिपाई है तापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के कियत जो बिपायत अजाप देव बूदना सदीव तुही उच्चरत है। नभ के उड़त जो बे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है आग में जरत गत राण की परत कर पताल के बासी के हो जंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान वो हिंदू तुरक को रावसी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो। करता करीम सोई राज कर रहीम उई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानवो एक ही किसे सब ही को गुर देवे एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानवो। देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज उई मान सब एक भय अनेक को भ्रमाव है देवता देव जस गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देश निज भेष को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक वान खाक बाद आतस ओ आव को रलाओ है अल्लाह अफेक सोई पुरान हो कुरान हुई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। कितने कछ मछ कितने उनको करत भछ कितने अछ वछ हो सपच उड़ जाहेंगे कितने नव बीज अछ पच को करेंगे फच कितक प्रत्यक्ष हो पचाए खाए जाहेंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज जीव तेज मैया तेज जैसे तेज लीन ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डूबत कित आग में जरत है कित गंग वासी कित मति ना मकानी वासी कित उदासी के फरमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुह पे चढ़त कित दुह को भरत है गैन में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हर देवता विरोध हर दानव वटे बोध हर बोधक प्रबोध हर जापसी घस हर चंदन लगाए हर चो अचार पूज हर पाहन चढ़ाए हर लापसी गाह हर गोरन मनाए हर मड़ी मटली बहार फीतन लगाए हर छापसी गाय हर गंधर्व बजाए हर किन्नर सब पच हर पंडित तपंत हर तापसी।

रूपं न रेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं लेखं भेखं जोनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बोधदा वृद्धरूपं नहीं जान जाय कछु रूप रेखं कहां बासता को फिर कौन वेखं कहां नामता को कहा वे कहा कह बखानो कहे मैं ना आवे न रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं द्वेखं भेखं जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशीय छेदं गच्छयाद अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपायो सारे गड़े फेर मिटे बनाए अगाधे अभयाद अद्वय अविनाशी परेयं परापरं पूर्ण प्रकाशी न आदं न व्याधं अगाधं स्वरूपे अखंड प्रताप अदच्छय विभूते न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहं न गेहं सनेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्र स्वभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायं न रंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभं अभूतं अभेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनि अच्छयाद अद्वय अजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं अभय निर्विघातं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायं न नेहं न गेहं न भर्मं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदेवं सदा सिद्ध विरदं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नियुक्तं प्रभाद अनुक्तं प्रतापे युक्तं गच्छयाद विक्त यथा वै विमुक्तं गच्छयाद अच्छ स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्मं न साके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे कहूं कंज के मज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के क्रम के हरम जाने कहूं धर्म के क्रम के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्वभूपं कहूं नेह गृहं कहूं देह दुखं कहूं औषधि रोग के शोक सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत वाणी कहूं यक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूम की भुगत मैं वरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जच्छ विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्धावस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूं वीन विद्या कहूं गान कीर्तन कहूं मलेच्छ व्याख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नाग बानी कहूं गारुड गूढ़ कथा कहानी
कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छैल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राज साजंग राजाधिकारी। नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेदी अक्षयाद अद्विधाता न त्रस्तंग न ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग तु अस्तंग भूते।

अगंज आद देव है अभंज भंज जानी है भूत भूत है सदा गंज गंज मानी है। अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध सदीव सर्व सात है। अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता। अनूप रूप स्वरूप है छिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए। नराग रंग रूप है न रोग राग रेख है अधोग दाग दग्ग है अभ्रूत ब्रह्म विख है। न तात मात जात है न पात जिहन वर्ण है अदेघ शेख भेक है सदीव विश्वभरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्वभरण है जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है। अद्वेख है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्व ठौर में विशेख आन मानिए। न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण कुरान नित नित कह बतावई। न करम में न धर्म में न भरम में बताइए गंज आद देव है कहो सो कैसे पाइये। जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है। नहान है न बान है समान रूप जानिए मकीन ओ मकान अप्रमाण तेज मानिए। न देह है न गे है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है। न अंग है न रंग है न संग है न साथ है न दोख है न दाग है न द्वैग है न देह है। न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है। न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है। न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न

न रंग राग रूप है, न रूप रेखरार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि करंत सेव है, सदा से दसपति तपस्पति वनस्पति जपसदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्तपि विशेखिये, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ बेखिये। अगाध आद देव की अनाद बात बानिए, अजात बात मंत्र मित्र सत्र सने जानिए। सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रहे, तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोत है।

सनक औसन के सनंदन पावई न सेब जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार नेत नेत पुकार ही शिव सक्र अमुख चार सर्व सबद अवतार के तर जाप ही जह जाप आद देव गाद ते जनाद मूर्त ताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहयो विराज धीराज राज प्रवीन जछ गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैसन के बिखे विराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म सेक स्वरूप राज दिवस न मद उर्द न भूम आकाश अनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सपत वतार के तर जानिए जह ज्योत शेष नाम सहंस फन नह नेद पूर्ण होत सोद सोद हटे सभ सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर गरब पड़द पड़द थके महाकव गढ़त गाढ़ अनंत हार हार कहो सबो मिल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लखियो न सेवक देव देव दानो मूढ़ बानो जछ न जाने जेव भूत भव भवान भूपत आदनाथ नाथ अगन बाज लेथले महे

दुष्ट गंजन सतरभंजन परम पुरख प्रमाथ दुष्ट हरदा सृष्ट करता जगत मै जय घात भूत भव भविख भवान प्रमाण देव गंज आद अंत अनाथ श्रीपद परम पुरख अभंज धर्म के अन करम जित किन तौन पसार देव देव द्रव किन्नर मछ कछ अपार भूम का जले थले मेहमानिये जे नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता सृष्ट हरता काम दुष्ट हरना सृष्ट करना दयाल लाल गोविंद मित्र बालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद अखौ दंडन दुष्ट खंडन काल हो के काल दुष्ट हरनंग पुष्ट कर

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देव खंड भूम का जले थले महे जपत जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देवा पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे गई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्र अमुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थक थक थके सब गुण चक्रत भे अमुख चार आद अंत न मध जा को भूत भाप भवान सत द्वापर तृतीया कल युग तत्रकाल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबे नहीं पाइये तह पार नारद आदक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सबे कर कोट कष्ट तुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोत सोत थके महासुर पायो नह पार त्व प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मस्यो बैन सब तब जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहाँ सृष्टि को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जी तब कह मरण है कवन सुरक कह नरक को सुघड़ा को मूढ़ता कहाँ तरक अवतरक दोहरा को निंदा जस है कवन कवन पाप कह धर्म कवन जो को भोग है कवन करम अब करम दोहरा कहो ससम का सो कह दम को कहा कहंत को सोरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा कहाँ रंग राजा कवन हरम सोग है कवन को रोगी रागी कवन कहो तात्मय तवन दोहरा कवन दृष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश कहाँ चितन की चेष्टा।

दल दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आदि वृते चरासन मारण नरक निवारण पतित उदाहरण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन रमक परदन छत्र छिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप अते चंडासुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विधुंसन महक मथे दान प्रहारण नरक निवारण अदम उदाहरण ऊर्ध अधे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन रमक परदन आदि वृते डावरू डबंके बबर बवंके भुजा फरंके तेज बरंग लंगुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखण दमके अत सि झमके फुंक फनंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जनंग चंडा सुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगण धुजा फरंगण फणि फुंकारण ज्योत जिते सरधार विभर खंड दुष्ट प्रकर खंड पुष्ट प्रहर खंड दुष्ट मथे जय जय हो से मैं खासुर मर्दन भूम कासल हृदय थे दामरी प्रहासन सुछभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन ज्योत प्रणवाचन हृदय नराचन धरम वृते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़क धरे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघ ओख निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शुद्ध मते फणि अर्फंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूमा काश पताल जनंग चाचर चमकारन चिच्छर हारण धूम धुकारण द्रव मथे दाढ़ी प्रदंते जोग जयंते मरुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रते

धर्म दुजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्ना हे अगम था हे एक वृते जय जय हो सी मखा सुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन वंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमार अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंगणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितल तरे जय जय होसी सब ठौर निवासन पाए पताल कासन ले संकटी निवारण अधम उधारण तेज प्रकार खण तुंद तबे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद काद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क पितर्कण तब तपतापन जबत जिवे जय जय होसी सस्त बगल खण आद नील काद अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे दूर भुजे दामनी दमंके के हर नंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्तासुर खंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन वृतन विमोचन सोज बिसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुप्रत सुवासे दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मखा सुर मर्दन आद अनाद गादोर्धं घंट का विराजे रुणझुण बाजे भ्रम भय भाजे सुरत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल विघ भाजे सुखोपराजे माधोरंग दुर्जन दल दज्जे मंथन रिज्जे सब न भज्जे रोह रणंग जय जय होसी मखा सुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोज अरोधन क्रूर विते धूमराज विधुंसन प्रलय भजुंसन जग विधुंसन शोध मते जाल पा जयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़वते जय जय होसी मखासुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खतरियान खतंगी अभय अभंगी आद अनंगी अगाध गते ब्रिडलाज बिहंडन चुर दंडन तेज प्रचंडन

दामनी प्रकाशय उन्तननासे ज्योत प्रकाशय तुलबले दानवी प्रकरखण सर्ववरखण दुष्ट वृधरखण पितलतले अष्टायत वाहन बोल निवाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो श्री महासुर मर्दन आदय अनाद अगाध प्रते दुख दुख प्रवच्छन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारम सन्नाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल काहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय हो श्री महासु मर्दन साध प्रदर्शन दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ कहिली ज्योत जतिली तुंत मते अष्टायद चमकन शस्त्र झमकन दामिन दमकन आद व्रते डुक डुकी दमंके बाघ बंके ऊजा।

उदान वह अनंत तो कहो जथावत त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल अत वह भूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दुख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत कई ऊच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सेवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए अंश जिते जैन भय प्रकाश दाता दुरंत अद्वै अना सब रोग सोग ते रहत रूप अन भय काल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत साथ जय जात बात नहीं भेद भ्रम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अविचल पार जानी न जाय जय रूप रेख कहे बांस तास कहे कौन भेख कहे नाम तास है कवन जात जय सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चयन नहीं रंग रूप जय खेद वेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पार ऊर्धं बिरहं सिद्धं स्वरूप बुद्धं पाल जुद्धं अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेजन भेजताग जल थल महीप बंतन दुरंत जय नेत नेत निस दुनु चरंत पायु न जाय जय पैर पार दीनान दोख दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मानंद जय नेत नेत निस दिनु चरंत स्व प्रसाद सवये दीनन की व्रत पाल करे निज संतु बार गनी मन गारे पाछ वसु नग नाग नराद सर्व समय सबको व्रत पार पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम विचारे दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देतन हारे दाहत है दुख दोखन कवदल दुजन के पल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सके पदमा पद भेद कते व भेद उचारे रोज ही राज विरोकत राजक रूख रुहान की रोजी नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहंगना भेव लख्यो भ्रम से भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किंसरी पदमा पद पाए आद अनंत अगाध अद्वेक स्वभूत भवेख भवान अभय है अंत विहीन अनात्म आप अदाग अदोख अछिद्र अछय है लोगन के करता हरता जल मैथल में भरता प्रव है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सभोतन नेह विरक्त केह अछ है जान को दे दे जान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है काहे को डोलत है दुम्बरी सुध सुंदर श्री पदमा पतल है रोगंते और सोगंते जल जोगंते वो भांत बचावे सत्र अनेक चलाव दिखाओ तो तन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दे कर पाव सम्भूहन भेटन पावे और की बात कहा कह तो सो सो पेट ही के पट बीच बचावे जाछ भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम काल बताल सातल जाछ भुजंग सब सिर न्यावे पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हो मिल गायो वेद कतेव न भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमा पद सिद्ध सनाद सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मै जह को मितो जस मै जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब पचहारे भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे अध अनाद अगाध अवेख अद्वेख जप्यो

हे निर्माण निर्माण सतगुरु नितान देताण उजादी उपनी आश्रय आश्रय आश्रय गुरु गिरि निवास जी आप जी दा जरूर कीर्तन कर दिया हूं यहां सब बेटा जरूरी सुद सच्चे पाशा जी महाराज जिना जिना मैं पावलो सब बेटा जरूरी सुद सच्चे पाशा जी महाराज जो सब ना दिल कलाउनी चढ़दी कला बख्शनी गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सर्वदा

तेरा अंतम जय लिखिया रहा। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपुर रहे तू सच्चा साक्ष सुआलो जिन की सुपार पया कहो नानक ते किया बाता जो कुछ

सोई थी सी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहा। सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनू कृपा करह तन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी

मन होई चित की इच्छा, तव चरनन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब है तुम घावो। आप हाथ दे मोहे बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब है कर तारा, मोर अच्छा निज कर दे करिये। सब बैरन को आज संगरिये,

सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास नवरी है, ऊजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुज जो करी यह रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता।

सिमट भयो संकर कैठा, सगरी श्रेष्ट दिखाए अचंभव, आजुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत तुत पाता, सकल मलेच करो रण घाता, जे सुधुजताओ शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तुहय मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट न है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई,

चौपई सम सतरै सैस भणी जय अर्ध सैस फुन तीन कहे जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ।

नान जंत उपाय के संभाले सुना जिन करते एक ना किया चिंता पहे करने ता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग ते सुजारे स्वस्थ ते सत

0: द्वापर तपे का सतागिरथ बाओ कलयुग्रते अगन का कोणी अगिरथ बाओ महला पहला।
1: साम कहे सत्यमर स्वामी सचमाचे साथ रहे सबको सत्सम।

पावड़ी साहिब दया कृपा करे तो साहिब कार कराए सी सौ सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म मनाए सी हुक्म मनया होगा परवान तो कसमें का मैल पाए सी कसमें भावै सो करे मनु चुंदया।